अंत तो हो जाना है, लेकिन ये नहीं जानता कि अनंत के आगे बेअंत है। अंत होने से पहले बेअंत को जान लो तो फिर अगले वाले अंत में भी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। बेअंत इस मालिक खालिक को कहते हैं जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम सरगम, एपिसोड 2, प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
3: फिल्मी गीतों पर आधारित पेश है प्रोग्राम सरगम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपकी कसम फिल्म के गीत के साथ, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

लीजिए अब सुनिए मन की आंखें फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चलते चलते से। गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अब आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाना, जो वापस फिल्म का है। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं मजरूं सुल्तानपुरी ने।

सभी श्रोताओं के लिए पेश है फिल्म शर्मिली का गाना, जिसे लिखा है नीरज ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने और स्वर दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: ए यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा।

इस कार्यक्रम का अगला गीत है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है अप्रैल फूल।

अब आपके नजर है जान निसार अख्तर का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत से सजाया है जयदेव ने। फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत और आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी के लिखे हुए गीत की, जो फिल्म त्रिशूल का है, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत दिया है खयाम ने।

अब पेश है फिल्म ताजमहल का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और जिसे लिखा है साहिर रिजानवी ने, और संगीत रोशन का है।

इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत। संगीतकार आरडी बर्मन, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं उसका फीडबैक हमें जरूर रेडियो वितस्ता के इस नंबर पर दीजिए। नंबर है 7056413010। सरगम कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
3: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
4: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
3: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
4: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साय 7 बजे
3: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
4: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साय 8 बजे
3: गणपति बप्पा मोरिया।
5: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ

आपने ट्यून किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सपोई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz।

जानिमन, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई एक्टर अपने किरदार को असली बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है? The Actors Eye सीरीज के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म पर बात करने वाले हैं, उसने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म का असली मतलब सिखाया था। वो फिल्म है 2 बीघा जमीन, जो 1953 में आई थी। और आज हम एक एक्टर के तौर पर जिस लेजेंड को स्टडी करने वाले हैं, वो है बलराज सहानी साहब। उनका अमर किरदार शंभू महतो। शंभू एक सीधा साधा किसान है। वो अपनी जमीन बचाने के लिए कलकत्ता पहुंच जाता है और वहां वो रिक्शा चलाने लगता है। एक एक्टर के तौर पर हमें बलराज सहानी साहब से 3 चीजें सीखनी चाहिए। जी हाँ, 3 चीजें। पहली है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। भाई लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किरदार के लिए बलराज सहानी साहब ने असल में, जी हाँ बिल्कुल असल में, कलकत्ता की सड़कों पर कई हफ्तों तक रिक्शा चलाया था। उन्होंने असली रिक्शे वालों के साथ समय बिताया कि वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे चलते हैं, या रिक्शे वाले बीड़ी कैसे पीते हैं, उनके बात करने का लहजा सीखा। एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि आपका किरदार सिर्फ स्क्रिप्ट के पन्ने में नहीं होता है, वो असल जिंदगी में कहीं ना कहीं सांस ले रहा होता है। बस आपको उसे ढूंढने की आवश्यकता है और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करना है। दूसरी सीख, फिजिकलिटी एंड एग्जॉशन। फिल्म में शंभू की जर्नी देखिए। गांव में वो एक स्वाभिमानी किसान है। उसकी चाल सीधी है, लेकिन जैसे ही वो कलकत्ता पहुंचता है, वहां की तपती सड़कों पर नंगे पैर रिक्शा खींचते हुए उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। हाफती भी सांसें, पसीने से तर बतर चेहरा और पैरों के छालों का दर्द। बलराज जी ने थकान की एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने उस थकान को महसूस किया है। आपको सीखना चाहिए कि आपके किरदार की परिस्थितियां उसके शरीर को कैसे बदलती हैं। और तीसरी बात, सुपर ऑब्जेक्टिव यानी कि किरदार का मुख्य लक्ष्य क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब शंभू की बात करते हैं। उसका हर एक्शन, उसके हर पसीने की बूंद के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य था, और वो ये था कि उसे अपनी 2 बीघा जमीन वापस पानी थी। फिल्म का वो रिक्शा रेस वाला सीन याद है आपको, जहां शंभू की रेस एक दूसरे रिक्शे वाले से होती है, बलराज जी की दौड़, उनका हाफना और अंत में सड़क पर गिर जाना, वो इतना असली है कि दर्शक के तौर पर आपकी अपनी सांसें फूलने लगती हैं। यहाँ कोई मेलोड्रामा नहीं है, सिर्फ एक इंसान के सर्वाइवल की लड़ाई है। तो भाई लोग, बलराज सहानी जी ने हमें सिखाया कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं है, ये अपनी आत्मा को किसी दूसरे इंसान के शरीर में डाल देने की कला है। जी, उसी का नाम है एक्टिंग। अब समय है आज के होमवर्क का। उसमें ये करना है कि आपने अपने पसंद का कोई भी डायलॉग लेना है जिसमें 4-5 लाइनें हो, उसको अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद अपनी जगह पर खड़े रहकर दौड़िए, खूब तेज दौड़िए या फिर जंपिंग जैक कीजिए, और जब आप पूरी तरीके से थक जाएं, हाफ जाएं, तो तुरंत कैमरा ऑन कीजिए और परफॉर्म करना शुरू कीजिए। और ध्यान दीजिए कि जब आप हाफ गए थे तो आपके बोलने के अंदाज में क्या क्या चेंज आया, क्या क्या बदलाव आया, इसी बदलाव को नोट डाउन कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने क्या बदलाव महसूस किया। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मास्टर क्लास के साथ।

دوستو، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں رمیش مراٹھا۔ نمستے۔

और सेहराओं में खेली लुक्का छुपी, फिर पिघलते रहे भरी दोपहर की तपिश में। मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, और मैं चुपचाप सहता हूं। हे हमें रात की ठंड का इंतजार, क्योंकि यहां तुम्हें मुझे इन गुप्त अंधेरों में शीतलता का एहसास जो है। आओ यहां इन सहराओं में खेले लुक्का छुपी, फिर से बीते दिनों की यादों को

तथा गुजरे दौर की यादों के साथ। जब भी चले सिर्फ अकेले चले इन अनजान रास्तों पे, जो कभी अपने थे भी वो भीड़ में गुम हो गए, खो गए इन बदलते मौसमों के साथ। पर इसके बावजूद जब जब दिल धड़कता है तुम्हें याद करते हैं।

मुस्कुराहट ही हुस्न का जेवर, मुस्कुराना हमें भी सिखा दीजिए। अभी तो बहार की शुरुआत है, पर मौसम बदलने में देर कहाँ लगती है। ये भी शिकवा नहीं कि सब कुछ क्यों सहता रहा। बात इतनी सी है,

जब जब तेरा जिक्र होता है महकता हूँ बहकता हूँ भटकता हूँ रूह में उतर जाती हो ख्वाबों की ताबीर बन जाती हो इन हवाओं में मुस्कुराती हो इन फिजाओं में गुनगुनाती हो जब जब भी तेरा जिक्र होता है।

सिर्फ तुम्हारी परछाई है, जिसे मैं हर पल महसूस करता हूं, बिठाता हूं अपने पास, संवारता हूं, सजाता हूं, बातें करता हूं। गर्ज इश्क था तुम्हारा वजूद, पर फिर भी तुम हमारे न हो सके, और तमाम सफर परछाइयों के साथ ही गुजर गया। ये जमीन चुप, आसमान चुप, मैं चुप,

यहां हर तरफ गूंजती है सदाएं इश्क की, और तुम्हारी आंखों में झील जैसी खामोशी और बदलते मौसम की झलक दिखाई देती है। यहां हमारे संग संग बादल तैरते हैं और इन नीले आसमानों में हम खोजते हैं अपनी अपनी वीरान बस्तियां। आक्रोश भी है कि ये बदलते मौसम हमारे कभी क्यों नहीं हुए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधारे हैं।
0: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

पेश है कार्यक्रम गीतस्ता गीतमाला एपिसोड 4। आज का कार्यक्रम आधारित है कवित्री दिव्या बसीन कोचर के एक कवि संग्रह साहिलों की रेत पर। पेश करेंगे भारत सोपोरी।

संग मौसम के ढल गई हूं मैं, आंधियों में भी पल गई हूं मैं। पांव में जो बंधी थी जंजीरें तोड़कर अब निकल गई हूं मैं। नफरतें तंज तीखे तेवर सब जाने क्या क्या निगल गई हूं मैं। लोग सब ही खफा खफा से क्यों, क्या कोई सच उगल गई हूं मैं। मां बनी मैं बहू कभी बेटी, कितने रिश्तों में डल गई हूं मैं। आईना करता है शिकायत अब, इस कदर क्यों बदल गई हूं मैं। आज मासूमियत मिली मुझको, देख दिव्या मचल गई हूं मैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 4। आज का कार्यक्रम आधारित है दिव्या बसीन कोचर की लिखी रचनाओं पर, काव्य संग्रह साहिलों के रेत पर। बिखरे हुए ख्याल में लफ्जों में डालकर, गजलों में अपनी रखती हूँ अक्सर संभाल कर, यादों की खुशबुओं से महकता है घर मेरा। पढ़ती हूँ जब भी खत मैं पुराने निकालकर, शोहरत कमा रहे ये चैनल नए नए, टीवी पे एक दूजे की पगड़ी उछाल कर। सारे गुनाह रख लिए मैंने खुशी खुशी, दिव्या तमाम नेकियां दरिया में डालकर।

दिव्या बसीन कोचर आगे लिखती हैं, खुशी बनकर हंसी बनकर दुआ बनकर महकता है, गुले खुशबू बुजुर्गों की जहां वो घर महकता है, सभी का ध्यान बरबस खींच लेता है कहानी में, मेरा किरदार अदना सा है पर अक्सर महकता है, मेरे लहजे में अब गुलने लगी है खुशबुएं तेरी, सभी कहते हैं मुझ में अब मेरा दिलबर महकता है, मुझे दी थी मेरी मां ने जो एक तहजीब की चूनर, मैं जब भी ओढ़ कर निकलूं तो मेरा सर महकता है, मुझे छूकर गया है जब से तेरी याद का झोंका, खिला गुलशन कोई दिव्या मेरे अंदर महकता है।

दिव्या बसीन कोचर आगे लिखती हैं, हुआ है क्या मोहब्बत का असर, कहती नहीं हूँ मैं। बदल डाला है खुद को किस कदर, कहती नहीं हूँ मैं। अलग अंदाज है माना ये मेरी सच बयानी का, कलम कह देती है सब कुछ मगर कहती नहीं हूँ मैं। अदब आदाब में रहना सिखाया है अदीबों ने, उठाकर सामने उनके नजर कहती नहीं हूँ मैं। हुनर को यूं परखने का है ये मैयार तो होगा, फकत दौलत कमाने को हुनर कहती नहीं हूँ मैं। सजाती हूँ मोहब्बत से दरो दीवार, औरत हूँ। मकानों को बना देती हूँ घर, कहती नहीं हूँ मैं। समझते हैं ये मेरा दर्द रिश्ते पाऊं के छाले, किया ताई किस तरह मैंने सफर, कहती नहीं हूँ मैं। सजे महफिल पुराने दोस्तों की जब कभी दिव्या, किसी भी बात को फिर मुख्तसर कहती नहीं हूँ मैं।

दिव्या बसीन कोचर लिखती हैं, बद नजर हो गई है दृष्टियां क्या करें, डर के सहमी हुई है तितलियां क्या करें, जिंदा रहना है तो चुपियां ओढ़ लो, बोलने पर है पाबंदियां क्या करें, कैसे मानूं भला मुझको भूले हो तुम, बंद होती नहीं हिचकियां क्या करें, पार कैसे करें हम समंदर भला, पास है कागजी कश्तियां क्या करें, दौर है स्नैपचैटिंग इंस्टा का ये, इस जमाने में गुम चिट्ठियां क्या करें, रूठी रूठी बहारें हैं तुम बिन सनम, दिल की उजड़ी हुई बस्तियां क्या करें।

गुड़े गुड़िया मेरी संग नादानियां, छूटी बाबुल तेरे घर सभी मस्तियां। भूल जब से गए याद करते नहीं, तब से ही बंद है ये मेरी हिचकियां। देख गुलशन में पसरी उदासी है क्यों, फूलों से मिलने आती नहीं तितलियां। जब पुरानी किताबें वो ली हाथ में, फिर महकने लगी थी तेरी चिट्ठियां। रुक गए काम दिव्या अचानक बने, गरम अफसर की होनी लगी मुठियां। और इसके साथ ही प्रोग्राम का समापन भी करता हूं। उम्मीद है आपको ये आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर भेजने की कृपा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 4। आज का कार्यक्रम आधारित था कवित्री दिव्या बसीन कोचर की एक कवि संग्रह साहिलों की रेत पर। कार्यक्रम रिकॉर्ड एडिट निर्देशित पेश किया भारत सोपुरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: नमस्कार, 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता। रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। आज आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर दोबारा हाजिर हुआ हूं, और आज के प्रोग्राम का शीर्षक है कसक एहसासों की। बहुत सी बातें जिंदगी के बीच में बीतती हैं, वक्त बीत जाता है, लेकिन वो चुभन, वो कसक, वो कभी खत्म नहीं होती। और आज आप सबकी उन्हीं कसकों को दोबारा से उभारने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है कसक एहसासों की। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन मैं सच चाहता हूं कि गानों के साथ साथ में आप लोगों से बातचीत भी करता रहूं और अपने ख्यालात भी आपके साथ में बांटता रहूं, क्योंकि अश्क आंखों में उठाते हुए थक जाता हूं, बोझ पानी का उठाते हुए थक जाता हूं, पांव रखते हैं मेरे जज्बातों पे जो, वो क्या जाने मैं निशानात मिटाते हुए थक जाता हूं। भाई सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ और आनंद बख्शी का लिखा हुआ बॉबी फिल्म का

पक्षियों को पास में रहने दिया या नहीं रहने दिया, ये तो ये दोनों लव बर्ड्स ही जाने। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप हमारे से रेडियो विचस्ता से प्यार करेंगे ना, तो हम जिंदगी भर निभाने का वादा करते हैं आपसे। क्योंकि नाम की दोस्ती, काम की यारी, दूसरों की तरह ये आदत नहीं हमारी। अगर आप भरोसा करेंगे तो हम भी आप ही के सहारे का भरोसा करेंगे। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो लता मंगेशकर जी ने सफर फिल्म के बीच में और कल्याण जी अंत

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा, आपके दिल के जज्बातों को पेश कर रहा हूं आप ही के कार्यक्रम कसक एहसासों की गिल। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। बाहर सावन बरसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बदरा नैनों में छाता है ना, तो दिल पर भी फर्क पड़ता है और जहन पर भी फर्क पड़ता है। फिल्म मेरा साया में लता मंगेशकर को सुनिए, मदन मोहन के संगीत में जिसके बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने।

को महसूस किया जाए यह खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, क्यों तलाश रही है तेरी बेताब निगाहें हमको, क्यों तलाश रही है तेरी बेताब निगाहें हमको, खुद में झांक तेरी आंखों में दिखाई देंगे, खुद में झांक तेरी आंखों में दिखाई देंगे। और महबूब जब आसपास कुछ वक्त तक नहीं दिखाई देता ना, तो फिर दिल ही कहता है, दिल जो इज्जत फिल्म के बीच में लता मंगेशकर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में साहिर लुधियानवी की कलम से कहा था, आइए हम सब भी सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल देते हैं। कुछ लोग दिल की बात आंखों से ही बोल देते हैं। भरोसा फिल्म में लता मंगेशकर को सुनिए, संगीतकार हैं रवि और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

0: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: बहुत से कस्में वादे होते हैं मोहब्बत के बीच में, लेकिन बहुत कम वायदे हैं जो पूरे हो पाते हैं। हालांकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं। चलिए छोड़िए उनको, बात वो सुनिए जो मैं कहता हूं आपको, कि दिल में मतलब और जुबान से प्यार न कर, दिल में मतलब और जुबान से प्यार न कर, मेरे महबूब मोहब्बत में ऐसा कारोबार न कर, मेरे महबूब मोहब्बत में ऐसा कारोबार न कर। नौजवानों को हम बोल नहीं सकते आज, इनके लिए भी पेश है ये आजकल का गीत, जिसको सचिन जिगर और साथियों ने गाया है, और सचिन जिगर ने ही इसमें अपना संगीत दिया है। आइए इस गीत के साथ भी हम लोग थोड़ा आनंद लेते हैं और फिर गीतों के नगमों के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे।

कसम एहसासों की कि इस प्रोग्राम में अब हम वक्त के उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां हमारा और आपका फिलहाल बिछड़ आता है। क्यों? क्योंकि वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपको और ज्यादा इन एहसासों की कसक महसूस करा पाए। इसलिए अब पेशी खिदमत है हमारा ये आखिरी गीत, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर कहेंगे कि अपनी परछाई में जुल्फ़ों न संवारा कीजिए, अपनी परछाई में जुल्फ़ों न संवारा कीजिए, मैं बन जाऊं आईना बस एक इशारा कीजिए, मैं बन जाऊं आईना बस एक इशारा कीजिए। रेशमा को सुनिए फिल्म हीरो में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस खूबसूरत गीत के साथ में हम आपसे चाहेंगे इजाजत। बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक और नया प्रोग्राम लेकर। हाँ, आपका दोस्त, आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है कि अगर आप हमारे को इतना प्यार देते ही हैं तो जताते क्यों नहीं। आपको हमारे प्रोग्राम्स, हमारे गीत या रेडियो वितस्ता द्वारा प्रोग्राम पेश किए जाने वाले सभी कार्यक्रम कैसे लगते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें बताइए और हमें ये भी बताइए कि किस तरह के प्रोग्राम और कार्यक्रम आप और सुनना पसंद करते हैं, ताकि हम वो बनाएं जिसे आप चाहें। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010, 7056413010। तो अब अपने रेडियो दोस्त, रेडियो हम सफर नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। फिर मिलता हूँ एक और प्रोग्राम में एक और नया कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विविधता हम सफर जिंदगी का। भारत सुपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विविधता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विविधता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विविधता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुक्रिया।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला गेट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है। हाँ, आंखों ही

0: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हमसफर जिंदगी का।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जोली जोली, जोनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल न जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: हम सफर जिंदगी का
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधारे हैं।
0: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: कुछ रिश्ते आवाज के मोहताज नहीं होते, कुछ एहसास सिर्फ महसूस किए जाते हैं और कुछ धुनें सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। आपने ट्यूनिंग किया है एफएम 9.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह और विदस्ता की खूबसूरत लहरों पर। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भारत सोपोरी और लेकर आए हैं हम एक ऐसा कार्यक्रम जहां गीत सिर्फ बजते नहीं बल्कि आपकी यादों, आपकी चाहतों और आपके एहसासों के साथ गूंजते हैं। यह है आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: और मैं हूं आपकी अपनी आरजे किरणी। कहते हैं ना, संगीत तो जुबान है जिसे सुनने के लिए कान नहीं दिल चाहिए। रेडियो विदस्ता पर आपकी भेजी हुई हर फरमाइश सिर्फ एक गाने की फरमाइश नहीं होती, उसके पीछे छुपी होती है किसी की याद, किसी की मोहब्बत, किसी की मुस्कुराहट और कभी कभी किसी की खामोश कहानी।
0: और इसलिए दोस्तों, आपकी फरमाइश में सिर्फ आपकी पसंद का गाना नहीं बजाया जाता, यहाँ बजती है आपकी मोहब्बतें, यहाँ सुनाई देती है आपकी ख्वाहिशें, यहाँ महसूस होते हैं आपके इमोशंस। आप जो महसूस करते हैं, आप जो कहना चाहते हैं लेकिन शायद शब्दों में कह नहीं पाते, उन्हीं एहसासों को हम एक खूबसूरत धुन के सहारे आपके अपनों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
1: कभी कोई गीत हमें किसी खास इंसान की याद दिलाता है, कभी कोई धुन हमें पुराने दिनों में वापस ले जाती है और कभी कोई गीत बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाता है। तो आपकी फरमाइश हमारे लिए सिर्फ एक नाम या एक गाने का टाइटल नहीं है, ये आपके दिल की आवाज है। और रेडियो विदस्ता की कोशिश है कि आपके दिल की यही आवाज किसी दूसरे दिल तक पहुंचती रहे।
0: रेडियो विदस्ता की ये लहरें सिर्फ फ्रिक्वेंसी नहीं है दोस्तों, ये एक सिलसिला है जो दिलों को दिलों से जोड़ता है। जिस तरह विदस्ता की लहरें अपना सफर लगातार तय करती रहती हैं, उसी तरह आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम भी चलता रहेगा, आपकी यादों के साथ, आपकी मोहब्बतों के साथ, आपकी ख्वाहिशों के साथ, आज कल और आने वाले हर हफ्ते आपकी आवाज बनकर।
1: तो दिल थाम लीजिए, यादों के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है वो सफर जहां हर गीत के पीछे होगी आपकी एक कहानी, हर धुन के पीछे होगा आपका एक एहसास और हर फरमाइश के साथ जुड़ा होगा किसी अपने का नाम। मैं हूं आरजे किरणी और मेरे साथ है भारत सोपोरी। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 रेडियो विदस्ता और अब आपकी मोहब्बतों, आपकी ख्वाहिशों और आपके एहसासों का अपना कार्यक्रम आपकी फरमाइश शुरू करते हैं। चलिए पहली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पहली फरमाइश आई है फिल्म गृहस्थी के गाने की, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, जिसके बोल है जाने तेरे नजरों ने क्या कर दिया। और ये फरमाइश हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाली श्रोता है पीएस नाहकर, निर्मला नाहकर, विशाल नाहकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। नीचे पेश है इन सब का ये पसंदीदा गीत।

जी हाँ दोस्तों, आपकी नजर है दूसरी फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अंबाला हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधु। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधु, जसबीर सिंह संधु, वरनीत कौर संधु, पवनीत कौर संधु और सारा संधु परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से गीत। गीत के बोल है जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने और ये लिखते हैं सभी कार्यक्रम प्रस्तोता को हमारी मीठी मीठी राम राम। मंशीलाल संधु और आपके परिवार को हमारी तरफ से भी बहुत सारा प्यार और मीठी मीठी राम राम। आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है कुम्हार हीड़ा सहारनपुर से। भेजने वाली श्रोता है सईद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सदाम। ये सुनना चाहते हैं फिल्म नीला आकाश का गाना जिसके बोल है तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। इस गाने को आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। लीजिए पेश है इनका फरमान।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता है आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और हैप्पी आनंद। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म चिराग का गाना, जिसके बोल है जब देख लिया मैंने तुमको, और अपनी खूबसूरत आवाज में सजाया है मोहम्मद रफी ने। लीजिए।

सुनाते हैं आपको अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजे वाले श्रोता है विनय मोहन खारवन, ये सुनना चाहते हैं फिल्म दोस्त का गीत। गीत के बोल है गाड़ी बुला रही है। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है मीनाक्षी, पलोमा व डॉक्टर ईशानी। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये मनपसंद।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है पुणे महाराष्ट्र से, और भेजने वाली श्रोता है निधि शुक्ला। ये सुनना चाहती है फिल्म अभिमान का गीत। गाने के बोल है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, और इस गाने को खूबसूरत आवाज में सजाया है लता मंगेशकर जी। और आपकी इस प्यारी सी फरमाइश पर लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

मेरे ही श्रोताओं, अगली फरमाइश जो हमारे पास पहली बार आई है इन श्रोता की ओर से, और ये है अमिता बत्रा प्रभु प्रेमपुरम अम्बाला कैंट से। ये अपनी फरमाइश का गीत अपने माता और पिता को डेडिकेट करना चाहते हैं, जिनका नाम है श्री वीपी बत्रा और श्रीमती सुदेश बत्रा। अमिता बत्रा जो गाना डेडिकेट करना चाहती है अपने पेरेंट्स को, वो है फिल्म एक फूल दो माली से। गीत के बोल है तुझे सूरज कहूं या चंद्रा। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है मन्ना डे ने, और अमिता बत्रा के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गौरव, शनाया, अमित, पूनम और तनुष। आइए प्रस्तुत है ये डेडिकेटेड सॉन्ग जो अमिता ने डेडिकेट किया है अपने

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगली फरमाइश, जो भेजी है हमारे पास कैप्टन अमरजीत शर्मा, बलविंदर सिंह और उनके दोस्तों ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म नागिन का गीत, जिसके बोल है मेरा दिल ये पुकारे आजा, और इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज में सजाया है लता मंगेशकर ने। नीचे पेश है इनकी पसंद का ये

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी किसी पुरानी हिंदी फिल्म की गीत की फरमाइश करना चाहते हैं, हरियाणवी गीत या पंजाबी गीत की, तो आप जरूर हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। आपको लिखना होगा अपना नाम, कहां से आप लिख रहे हैं, और आप उन सभी दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के नाम लिख सकते हैं जो ये फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। आप हमें मैसेज भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे और इसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। अब लेते हैं हम इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास इन श्रोताओं की ओर से पहली बार आई है। ये फरमाइश आई है अंबाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंबाला से। भेजने वाले श्रोता हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, इंजीनियर देवाशीष और आयर वेटरन अजय पाल सिंह। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आप तो ऐसे ना थे से गीत। गीत के बोल है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। हम आपको इस गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं और इसी उम्मीद से कि अगले हफ्ते हम आपसे फिर इस कार्यक्रम में मिलेंगे।
1: इसके साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कितना हसीन होता है ना फरमाइशों का ये सिलसिला। हर एक फरमाइश में आपकी मोहब्बत छुपी होती है। छोटी सी जिंदगी है, बड़ा सा कारवां है। आपकी पसंद से ही तो सजीला ये जहां है, पर अब रुखसत होने का वक्त आ चुका है। दिलों में यही मिठास लिए अब इजाजत चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।
0: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: You're enjoying 90.0 FM Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: घी ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए रेडियो विदस्ता, सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vetasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
3: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जयसिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो हितसत्ता सुनना भूल न जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पर गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरत्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विथस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
2: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो पप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
2: गणपति बप्पा मोरिया।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंग

0: थे दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: आना।
1: तुम जाओ अंजू, मैं यहीं ठहरता हूँ।
0: क्यों, उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो?
1: आखिर इंसान ही तो हूँ मैं।
0: अच्छा तो चलो

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है प्रोग्राम शाम गजल एपिसोड 2 कलाम भारती रैना। पेश कर रहे हैं आरजे किरणी।
2: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैना वारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग चले।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

जिंदगी के कुछ पल हैं ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 705641301 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

रहे थे प्रोग्राम शाम गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

कल रात एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों में मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख में चौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला कर मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों है खफा एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने जिंदगी से पूछा, क्यों इतना दर्द दिया तूने? वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। सुकून मौसीकी में आप सभी का स्वागत है, और मौसीकी के इस दौर के बीच में आज के सफर में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। ये मान लेना कि आगे क्या होगा, यही तो जिंदगी है। लेकिन जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि उतार चढ़ाव ही तो जिंदगी है। और हां, जिंदगी कभी एक जैसी तो नहीं रहती, कभी रुकती है पल भर को, तो कभी चलना शुरू कर देती है। क्योंकि एक जगह पर खड़ा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, इसी तरह से इंसान की जिंदगी के बीच में कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं। दिन है तो रात भी होती है, अंधेरे हैं सुबह के उजाले भी नसीब होते हैं। लेकिन कभी कभी

वो दो लोग जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले जीने और मरने की कसमें खाया करते थे, उनके ऊपर ऐसा वक्त भी आता है कि अपनी आवाज, अपनी बात अपने महबूब तक पहुंचाने के लिए उनको नगमों का सहारा लेना पड़ता।

मोहब्बत तो अपने आप में एक सरमाया है, ये सबको नसीब नहीं होती। कुछ ऐसे खास किस्मत वाले होते हैं जिनको ऊपर वाले ने इस खास नेमत से नवाजा होता है। ये दौलत है, मोहब्बत सुकून है, मोहब्बत लक्ष्मी है, और लक्ष्मी से किसे प्यार नहीं होता। यूं ही हर कोई नहीं कहता कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।

और जब किसी भी वजह से दो प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं ना, तो फिर इनका दिल इस दुनिया में तो नहीं लगता, क्योंकि इनकी तो दुनिया ही एक दूसरे के साथ ही होती है। ये तो एक दूसरे से जुदा होकर रहने का सोच भी नहीं सकते। बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है पर लगेगा नहीं, और जो आवाज फिजाओं के बीच में गूंजेगी वो यही होगी, ये दिल तुम बिन कहीं।

एक नामुराद बीमारी सी है ये मोहब्बत, फिर भी खींचती है अपनी तरफ और ना चाहते हुए भी आदमी प्यार के समुंदर के बीच में डूबता चला जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो खुद ही ये कह बैठता है कि मैं इस दलदल में क्यों फंसा। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते।

झरने की आवाज, जो पानी की आवाज है ना झरनों के बीच में से आती है, कई बार वो आवाज भी अपने महबूब के पांव में बची हुई पाजेब की झंझनाहट सी महसूस होती है और टप टप टप कर गिरती ये बारिश की बूंदें, ये भी अपने आप में मौसीकी का एक वो अंदाज लेकर चलती हैं जिससे सुकून मिलता है और महबूब अपने दिल की बात अपने दिलबर तक पहुंचाने के लिए आवाज देता है। तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको।

कितनी भी आवाज दो, लेकिन दुनिया की रस्म रिवाज बेबस कर ही देती है कि वो आवाज महबूब तक ना पहुंचे। न जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए हम, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए हम। आवाज दे के हमें न तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना

और जब बहुत यत्न करने के बाद भी मुलाकात नहीं हो पाती तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया बेकार है। महबूब के बिना इस दुनिया के बीच में मेरा कोई भी अपना नहीं। जिंदगी से नफरत सी होने लगती है। 4 दिन की जिंदगी में मैं किससे कतरा के चलूं? खाक हूं मैं, क्या खाक पे इतरा के चलूं? दिल की आवाज सिर्फ इतना ही कह पाती है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं।

एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भरी रेत की और हवा में उछाल दी। लेकिन महबूब ने जो भेजा वो फूल नहीं, एक खत था, और फूल की शक्ल में दिल के सारे अल्फाज उसमें बयां हो रहे थे। फूल, तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं, मेरा दिल है।

कायनात, ये दुनिया, ये आबो हवा, ये पहाड़ों की खूबसूरत वादियां, ये तैरते हुए बादल, ये अपना अफसाना कहती हुई खूबसूरत हवाएं, कई बार ऐसा मदमस्त माहौल बना देती हैं कि इंसान तो क्या बादलों के लिए भी कहना पड़ जाता है, दीवाना हुआ बादल। आइए आप भी सुकून मौसीकी के इस रवानगी के बीच में अपने आप को बहा लें। यही वक्त है, यही मौका है, तो इंतजार किस बात का।

बांसुरी की तरह है जिंदगी। इसमें बहुत से छेद रूपी बाधाएं हैं और जिसको इसे बजाना आ गया ना, उसे जिंदगी जीना आ गया। बांधकर मुझसे उड़ने को कहता है, मेरा कातिल ही मुझे जीने को कहता है। हर कदम देता रहा जो मुझको धोखा, बेवफा दोस्त वफा करने को कहता है। किससे करें फरियाद इंसाफ के लिए, मुझे लूटने वाला ही मेरे घर में रहता है। ना कर तजवीज तुम इससे मोहब्बत की, मेरे दिल में अरसे से एक बेमुरब्बत रहता है। फिर भी अगर मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता।

सोचता हूं कि ऊपर वाले ने इतनी बड़ी दुनिया के बीच में तो ऐसे शख्स क्यों माना है जो सिर्फ और सिर्फ एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा देखते हैं। एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। शायद यही मोहब्बत है। बेशक ना मिल पाए हूं, अलग अलग हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल में यह ख्याल तो आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए।

समझ जाती है, जिसे बेवफाई का नाम दिया गया है। बहुत वायदे कर लिए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक ही वायदे हैं जो पूरे हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं, जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें, और अगर खास मौके के इंतजार में रहे ना, तो इन खास मौकों के इंतजार में करोड़ों सपनों को बर्बाद किया है। जो वादा किया है उसको अभी ही निभा ले, आने वाला कल पता नहीं एक पल भी आपको देगा या नहीं देगा।

हसीन मौसम हो, खूबसूरत फिजाएं हों और महबूब का साथ हो, तो मरुस्थल के बीच में भी बाहर सी लगती है तू। जो मिल जाए तो खुशियों का रेला कर दे, गम के मरुस्थल में बरसात का ढेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद तो वो है कि जो मेले में भी अकेला कर दे। और ऐसे हसीन खूबसूरत आशिकाना मौसम के बीच में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसी अपने का साथ, किसी अपने का अंदाज, ताकि दोनों ही मिलकर कह सके कि मौसम

बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। और बहुत सी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। तो दोस्तों, क्या है ये जिंदगी? जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी कहानी है, और हम दोनों की कहानी इसी का नाम है जिंदगी।

सुकून मौसीकी के मार्फत हमने आपके दिलों में दस्तक देने की एक कोशिश की है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने ख्यालात, अपने विचार हमारे को हमारी ईमेल आईडी radiodasta@gmail.com के ऊपर जरूर भेजें, ताकि हम हमें प्रोग्राम आपकी मर्जी के मुताबिक पेश कर सकें। रेडियो विदस्ता की आज की खास पेशकश सुकून मौसीकी में मैं रहा आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा, आपका हम सफर।

अब दीजिए अपने इस दोस्त को इजाजत, फिर मिलता हूं किसी और प्रोग्राम के बीच में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।

को मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसीकजा का दामन थाम लेते हो। अक्सर बादल के टुकड़े दयारों में बदल जाते हैं और अनदेखी बस्तियों को राहत बख्शते हो, हरारत से महफूज रखते हो। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत क्यों बन गई।

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबान थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए कितने ही मौसम जाए, क्या कभी तुम लौट आए।

कहानी का बुलबुला जो बनता रहा, मिटता रहा। कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उड़का नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता नहीं।

मैंने सुना है यहीं से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही मसरूफ, अपने दुपट्टे से अपने ही चेहरे को ढकना, ये उनकी फितरत में शामिल है। दिल के ठहरे हुए पानी में पत्थर ना फेंको, चांद का अक्स बनाया है, बिखर जाएगा।

क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए है।

0: दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्ते।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। हम प्रसारण करते हैं अम्बाला छावनी से और इस सामुदायिक रेडियो का लाइसेंस भारत सरकार की ओर से अम्बाला के लिए मिला है और कुछ दिन पहले हमने तीसरी वर्षगांठ भी मनाई आपके प्यार और स्नेह के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:17। दोस्तों, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता और अब हम अपने आज के इस सुरीले सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे ये प्रसारण आपके सरोकार के रहते होंगे और आपको पसंद भी आते होंगे और आपके दिन को थोड़ा सा और खुशनुमा बनाया होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी विषय की। आप सभी जानते हैं हर दिन हम किसी खास विषय पर आपसे बात करते हैं। आपसे विदा लेने से पहले आज बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हमारे समाज की सोच बदलने की एक मुहिम है। आज भी कई जगहों पर बेटियों को बोझ समझा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि बेटियां किसी भी घर, समाज और देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं, बशर्ते उन्हें सही मौके और सही परवरिश मिले। बेटियों को शुरू से ही आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। जरूरी यह भी है कि जब उनको मौका मिले वो अपना 100% दें, समय के हिसाब से अपने आप को बदले, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को उन्हें डालना ही होगा। जब एक बेटी बचपन से सिर्फ चुप रहो, ये मत करो, लड़कों जैसा मत बनो जैसी बातें सुनकर बड़ी होती हैं तो वो अपने फैसले लेने से डरने लगती है, अपनी राय रखने से हिचकिचाती है। लेकिन जब उससे शिक्षा दी जाए, खेल कूद में हिस्सा लेने दिया जाए, सवाल पूछने की आजादी दी जाए तो वो बेटी आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या एक सफल उद्यमी बन सकती है। और उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे देश में, जिन्हें पंख दिए गए उन्होंने बहुत सारी तरक्की की और सभी को गौरवान्वित किया। क्योंकि जब आदि आबादी यानी बेटियां शिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होंगी तभी देश सही पैमानों पर तरक्की कर पाएगा। एक पढ़ी लिखी और सशक्त बेटी न सिर्फ अपने परिवार को संभालती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच भी बदल देती है। वो अपने बच्चों को भी सम्मानता, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ पालती है और इस तरह एक पूरी सामाजिक जंजीर बदल जाती है। इसका सकारात्मक असर देश पर बहुरूपी से होगा। लिंग अनुपात बेहतर होगा, महिला श्रम शक्ति बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, घरेलू हिंसा और दहेज जैसी कुरीतियों में कमी आएगी और सबसे बड़ी बात, समाज की मानसिकता बदलेगी कि बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है। एक ऐसा भारत बनेगा जहां हर एक बेटी बिना डर के

सपने देख सके और उन्हें पूरा करने का हौसला रख सके। जी हाँ दोस्तों, एक बात मैं अपनी ओर से भी कहना चाहता हूं, बेटा और बेटी में आज के दौर में कोई अंतर नहीं है। उन सभी पेरेंट्स के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर कभी बेटे व्यस्त हो जाएं, बेटी के लिए माता पिता का जो द्वार है, जो दरवाजा है, वो हमेशा खुला रहता है। तो बेटियों से ही हमारा समाज है और बेटियों से ही हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। यह था आज का विषय और मुझे उम्मीद है कि आपको यह विषय पसंद आया होगा और अपना फीडबैक जरूर भेजेंगे, हमें खुशी होगी आपका फीडबैक रिसीव करते हुए। हम आपको अपना नंबर अभी बताते हैं, उससे पहले हर दिन की तरह आपके लिए कुछ पंक्तियां लाया हूं जो आप सभी श्रोताओं को समर्पित करता हूं। आज की पंक्तियां यूं है, वितस्ता के पानी सी बहती रहे जिंदगानी, वितस्ता के पानी सी बहती रहे जिंदगानी, हर लहर में हो मोहब्बत, हर किनारे पर हो कहानी, सुर सजे साज बजे दिल में उतरे ये तराना, सुर सजे साज बजे दिल में उतरे ये तराना, FM 90 वितस्ता का हर पल हो सुहाना, FM 90 रेडियो वितस्ता का हर पल हो सुहाना। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय, आज की पंक्तियां, और जल्दी से आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 12 सितंबर 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम लाए हैं वो इस प्रकार है। हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, वंदे मातरम से हम करेंगे शुरू, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत, 7:05 पर संगीत का कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 6 पेश करेंगे आरजे किरनी, और 8:30 किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट का एपिसोड 11 आप सुन पाएंगे। कल के लिए विषय हमने चुना है हमारा पर्यावरण। 9:30 होगा कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2, और 10:30 पर इनसे मिलिए, हमारी बातचीत होगी डॉक्टर नूपुर सिंह से, पेश करेंगे नरेश शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी, 2 बजे आप सुनेंगे कृषि समाचार, 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, और 7 बजे सफर एहसासों का, पेश करेंगे नरेश शर्मा। ये हमारी आर्काइव से आपके लिए हमने प्रोग्राम लाया है। अगर इस कार्यक्रम में आवाज में कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है अंधेरों से रोशनी की उम्मीद। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये जानकारी जो मैं आप तक ले आया, इसको आप सभी के लिए तैयार किया हमारी कैजुअल अनाउंसर अनु ने। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपने घर, अपने आस पड़ोस में हर बेटी को बराबरी का मौका देंगे, उसे मजबूत बनाएंगे, दबाएंगे नहीं। इसी संदेश के साथ आज का ये प्रसारण हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। फिर मिलेंगे एक नए सुर नए जोश के साथ कल सुबह। तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।